0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र लालस और दीपिका दास। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लिपिका दास के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सशस्त्र सेनाओं के बहादुरों को रक्षा अलंकरण प्रदान करेंगी।
2: Today we gather to honor the courage, sacrifice and dedication of our brave defense personnel. We would like to inform our listeners that this is the second phase of this year's defense investiture ceremony, in which Honorable President Srimati Draupadi Murmu would be conferring the Ati Vishisht Seva Medal, Uttam Youth Seva Medal, Param Vishisht Seva Medal, and Sarvottam Youth Seva Medal.
1: इस वक्त यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। उनके साथ हैं श्री एचडी कुमार स्वामी, साथ में श्री किरण रिजिजू जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ साथ ही मौजूद हैं इस वक्त, सीडीएस जनरल एनएस राजासुब्रमणि, सीओएस जनरल धीरज सेठ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कुछ ही पलों में महामहिम राष्ट्रपति यहाँ पर पधारेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से ये समारोह प्रारंभ होगा। हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि 105 बहादुरों को, सैनिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्र की रक्षा के लिए विशिष्ट योगदान देने के लिए 56 सैन्य अधिकारियों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवाएँ देने के लिए 12 सैनिकों को उत्तम

0: युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवाएं देने वाले 30 सैनिकों को परम विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध में विशेष बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले 7 सैनिकों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे।
1: Dear listeners, as we witness this distinguished awards being conferred at this Ganatantra Mandapam at the Rashtrapati Bhavan, we celebrate their unwavering service to our nation. All awardees and the proud families are seated, waiting for the arrival of the Honorable President.
0: हम ये बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति का इस वक्त इंतजार, उपराष्ट्रपति जी इस वक्त पधार चुके हैं और वे विराजमान हैं और उन्हीं के साथ ठीक उनके पास बैठे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। महामहिम राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक दोनों तरफ 3-3 सैनिक मौजूद हैं जो अपनी पूरी वेशभूषा में इस सभागार की शोभा बढ़ाते हुए, दोनों तरफ आज वे 105 लोग बैठे हैं जिन्हें ये सम्मान दिए जाएंगे और आगे की रोज में वे लोग, इनके परिवार के लोग जो इस मौके के साक्षी बनेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण और रक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले हमारे सैन्य अधिकारियों और बहादुरों का आज यहां पर सम्मान होगा राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में।
1: A total of 105 awards will be conferred to the awardees today. A very prestigious event that honors armed forces, security personnel for exceptional acts of bravery, conspicuous courage and devotion towards their duties.
0: सभी को प्रतीक्षा है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की और वे पधारेंगी और उनके बाद रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार उनसे स्वीकृति लेंगे कि आज का समारोह प्रारंभ किया जाए और उसके बाद और उससे पहले राष्ट्रपति के आगमन के बाद सुविधा प्रेम बहादुर गुरंग बैंडमास्टर हैं महारेजिमेंट सेंटर सागर के, उनके नेतृत्व में वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी। और ये बिगुल की आवाज़ आप सुन रहे हैं। राष्ट्रपति जी इस वक्त प्रवेश करती हुई गणतंत्र मंडप में पारंपरिक हैंडलूम की जो साड़ियाँ पहनती हैं वो उन्होंने पहनी हुई, नीले रंग का बॉर्डर और थोड़ा सा सुनहरी गुलाबी रंग उनकी साड़ी में, उनके आगे और पीछे उनके ADCs चलते हुए धीरे धीरे सधे हुए कदमों से राष्ट्रपति जी अपने आसन तक जाती हुई, इनके ठीक पीछे बुद्ध की प्रतिमा।

0: वंदे मातरम और राष्ट्रगान। अब रक्षा सचिव राजेश जी अनुमति प्राप्त करते हुए आज के समारोह
1: की। महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह आरंभ किया जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने अभिवादन कर स्वीकृति दी और अब ये रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है।
2: अति विशिष्ट सेवा मेडल और साधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल तरुण चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल उड़ान पायलट।

0: Lieutenant General Neeraj Vashney, Vishisht Seva Medal.
1: Lieutenant General Neeraj Vashney, VSM, the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने सैल्यूट करते हुए सदैव कदमों से और प्राप्त करेंगे वे अति विशिष्ट सेवा मेडल। और ये तालियां इस बात का परिचायक कि सैनिक ने राष्ट्र की सेवा की है।
0: लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहिला, सेना मेडल बा।
2: Lieutenant General Vikas Rohela, Sena Medal, the Corps of Engineers, to receive the Ati Vishisht Seva Medal.
1: Lieutenant General Vikas Rohela, apne sainik paridhan mein Corps of Engineers ke aap adhikari hain aur apna samman prapt karke Rashtrapati ji ka salute karte
0: hain. Lieutenant General Harbinder Singh Vandra, Sena Medal.
1: कोर ऑफ सिग्नल्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह वांद्रा सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। महामहिम राष्ट्रपति जी सम्मान देते हुए अति विशिष्ट सेवा

0: सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद
1: लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
0: इन्फेंट्री के हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह, YSM, SM, सलामी देते हुए राष्ट्रपति जी को और अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए सदैव कदमों से राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गौरव का क्षण इन सैन्य अधिकारियों के लिए और परिवार के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाते हुए अभिवादन करते हुए
1: लेफ्टिनेंट जनरल
0: साक्षी बनते हुए
1: रंजीत सिंह।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड मार्चिंग टुवर्ड्स द डायस।
0: आर्टिलरी के अधिकारी हैं आप लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अति विशिष्ट सेवा मेडल और ये सैल्यूट
1: लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: डेकोरेटेड विद अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह विर्क इन्फेंट्री के अधिकारी हैं और भारतीय सशस्त्र सेना भारतीय सेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दिए इसलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल शमशेर सिंह वी आर हियर रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
1: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने और अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए
2: लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी सेवा मेडल रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं आज इन्हें मिलने जा रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल। द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं आप राष्ट्रपति जी के सामने जाकर उन्हें सैल्यूट करते हुए और अपना मेडल प्राप्त करते हुए
1: लेफ्टिनेंट जनरल चियारथ गोपालन मुरलीधरन।
2: लेफ्टिनेंट जनरल चियारथ गोपालन मुरलीधरन द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स।
0: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल चियारथ गोपालन मुरलीधरन भारतीय सेना की ओलिव ग्रीन वर्दी धारण किए हुए राष्ट्रपति जी से अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परिवार के सदस्य उनकी पत्नी और उनकी पुत्री
1: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा रेसिपिएंट ऑफ सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स टू रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत आहूजा VSM प्राप्त कर चुके हैं आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। राष्ट्रपति जी ने उनके सीने पर ये मेडल उनकी शान बढ़ाने के लिए लगाया पुत्री और पत्नी।
1: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई विशिष्ट सेवा मेडल विल रिसीव हिज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई VSM प्राप्त कर चुके हैं आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की। भारतीय नौसेना की सफेद वर्दी और इस वक्त प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर।
0: वाइस एडमिरल रजत कपूर जाते हुए राष्ट्रपति जी के मंच की तरफ पहले सैल्यूट किया है नेवी का जो अलग

0: सैल्यूट होता है, उसके बाद जाते हुए मंच की तरफ और अप्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल रजत कपूर रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली।
0: और अब बारी भारतीय नौसेना के एक और अधिकारी वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली की। आप अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के, भारतीय नौसेना को आपने विशिष्ट सेवाएं दी है, इसीलिए इन्हें प्राप्त हो रहा है आज अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: वाइस एडमिरल श्रीनिवास कुदरवली रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
2: वाइस एडमिरल सुशील मेनन विशिष्ट सेवा मेडल।
0: और अगली बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की वाइस एडमिरल सुशील मेनन की। विशिष्ट सेवा मेडल इनके सीने पर टंगा हुआ है जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने और पहुंचकर अपना पदक प्राप्त करते हुए।
2: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी।
0: नौसेना के ही सम्मानों की बारी अब आगे आते हुए वाइस एडमिरल अनिल जग्गी पहले मंच के सामने जाकर राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं, उसके बाद में पदक प्राप्त करने के बाद भी सैल्यूट करते हैं, फिर अपने स्थान तक जाते हैं।
1: वाइस एडमिरल अनिल जग्गी रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: सर्जन रियर एडमिरल वर्तमान में सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे विशिष्ट सेवा मेडल।
0: रबारी सर्जन रियर एडमिरल अब सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे की, जिन्हें VSM मिल चुका है और आज प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: सर्जन रियर एडमिरल नाउ सर्जन वाइस एडमिरल विवेक हांडे रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल वायुसेना मेडल उड़ान पायलट।
0: और अब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की बारी। एयर मार्शल मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट जाते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करेंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेहताब सिंह देसवाल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल कोंडन कोलंगारा अबू अहमद संजीव विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल कोंडन कोलंगरा अबू अहमद संजीव VSM एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के सदस्य हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: एयर वाइस मार्शल वर्तमान में एयर मार्शल सेट्टीपल्ली श्रीनिवासा राव विशिष्ट सेवा मेडल।
1: Air Vice Marshal, now Air Marshal Settipalli Srinivasa Rao, Vishisht Seva Medal, Aeronautical Engineering, receiving the Ati Vishisht Seva Medal from the President.
0: Aeronautical Engineering Electronics ke Air Vice Marshal, ab Air Marshal hain aap, Settipalli Srinivasa Rao, Ati Vishisht Seva Medal praapt karte huye, Bharatiya Vayu Sena ka hi adhikari, Rashtrapati ji ko.
2: Upper Mahanideshak Donnie Michael, President's Tatrakshak Medal, Tatrakshak Medal.
1: Additional Director General Donnie Michael, PTM, TM.
0: भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक डोनी माइकल अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। मुस्कुराकर फोटो खिंचाते हुए उनकी धर्मपत्नी तालियां बजाते हुए सैल्यूट करके वापस अपने स्थान तक जाते हुए।
2: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
1: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय सेवा मेडल VSM रिटायर्ड।
0: नारी शक्ति का प्रतीक

0: सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुकी हैं, अब सेवानिवृत्त है, लेकिन आज सम्मान करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी अति विशिष्ट सेवा मेडल उन्हें प्रदान करती हुई, और ये इतनी सारी तालियां इस बात का प्रतीक हैं।
1: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, सेना मेडल, VSM, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, टू रिसीव द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल सुधीर कुमार शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल पहले से लगा हुआ है और आज प्राप्त हुआ है इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पहल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: अब बारी है इन्फेंट्री के ही एक और अधिकारी मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल की, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्राप्त हो चुका था, आज इन्हें मिल रहा है अति विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल सुजीत शिवाजी पाटिल, VSM, द इन्फेंट्री, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह चौधरी, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Next recipient of the Ati Vishesh Seva Medal, Major General Sujit, I beg your pardon, Major General Gurpreet Singh Chaudhary, SM, VSM, the Army Air Defence.
0: Army Air Defence ke adhikari, Major General Gurpreet Singh Chaudhary, Vishisht Seva Medal. Aaj Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu inhe pradan kar rahi hain Ati Vishisht Seva Medal. Salute karte hue Rashtrapati ji ko.
1: Major General Ashish Shah, Sena Medal.
2: Major General Ashish Shah, Sena Medal, the Armored Corps, marching towards the Honorable President to receive his Ati Vishisht Seva Medal.
0: Armored Corps ke adhikari, Major General Ashish Shah, Mahamahim Rashtrapati ji ke samne jaate hue aur prapt karte hue Ati Vishisht Seva Medal.
1: Major General Amar Ram Dasani, Yuddha Seva Medal.
2: Major General Amar Ram Dasani, Youth Seva Medal, the Infantry.
0: Infantry ke adhikari hai Major General Amar Ram Dasani. Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu ke samne maujood hain aur prapt kar rahe hain Ati Vishisht Seva Medal.
3: Major General Vikas Chaudhary, Youth Seva Medal.
2: Major General Vikas Chaudhary, Youth Seva Medal, the Infantry, to receive his Ati Vishisht Seva Medal.
0: Salute karte hue aur jaate hue Rashtrapati ji ke samne Major General Vikas Chaudhary, Youth Seva Medal prapt kar chuke hain, Infantry ke adhikari hain. Aur ek joshili muskan unke chehre par salami dete hue
3: Rashtrapati. Major General Tarun Agrawal.
0: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, आर्टिलरी का अधिकारी, राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
2: मेजर जनरल तरुण अग्रवाल, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
3: मेजर जनरल वूदे परिदा, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल भूदेव परिदा, विशिष्ट सेवा मेडल, द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग द अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अधिकारी मेजर जनरल भूदेव परिदा, विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्रदान किया जा चुका है, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: मेजर जनरल सुमित मेहता, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal, the Armored Corps.
0: Armored Corps ke adhikari, Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal. Ab Rashtrapati ji ne pradan karengi Ati Vishisht Seva Medal.
3: Major General Vikrant Suresh Deshpande.

0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं आप, मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देश पांडे। राष्ट्रपति जी को सैल्यूट किया और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए।
1: मेजर जनरल विक्रांत सुरेश देश पांडे, इन्फेंट्री।
2: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडबाल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडबाल, अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल, विल रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी मेजर जनरल कुलेश्वर सिंह डडबाल विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज अलंकृत होंगे अति विशिष्ट सेवा मेडल से। ये एक और खुशी की बात, क्योंकि
2: मेजर जनरल विवेक नारंग,
1: मेजर जनरल विवेक नारंग फ्रॉम द इन्फेंट्री सैल्यूटिंग द प्रेसिडेंट।
0: इन्फेंट्री के अधिकारी हैं मेजर जनरल विवेक नारंग, राष्ट्रपति जी के ठीक सामने अपना पदक ग्रहण करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल। गर्वीली मुस्कान, उनकी पुत्री और पत्नी तालियां बजाकर।
2: मेजर जनरल परमवीर सिंह पुनिया, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल परमवीर सिंह पुनिया, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, विल रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल।
0: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी परमवीर सिंह पुनिया, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करेंगे राष्ट्रपति जी से।

0: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
1: इन्फेंट्री के ही अधिकारियों की बारी चलती हुई, बहुत सेवा की इन्होंने राष्ट्र की, सशस्त्र सेनाओं की, और अब बारी है मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर की।
2: मेजर जनरल कोलंकरा मोहन नायर YSM SM रिसीविंग गति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अरिंदम साहा, युद्ध सेना मेडल, सेना मेडल, सल्यूटिंग द प्रेसिडेंट एंड रिसीविंग दति विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: युद्ध सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं इन्फेंट्री के मेजर जनरल अरिंदम साहा, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। टुडे इट्स हिज टर्न टू रिसीव दैट विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी SM BSM मेजर जनरल महिपाल सिंह राठौर, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें मिलता हुआ।
0: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल अविंदर पाल सिंह बल, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज उन्हें प्राप्त होता हुआ राष्ट्रपति जी के हाथों, जो कि सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर हैं।
0: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल द इन्फेंट्री।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी मेजर जनरल धनंजय जोशी, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल मनदीप सिंह, सेना मेडल।
2: मेजर जनरल मनदीप सिंह, सेना मेडल इज एन एक्स रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के अधिकारियों की सीरीज चलती हुई, मेजर जनरल मनदीप सिंह की बारी है प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।

0: Rear Admiral Nirbhay Bapna, Vishisht Seva Medal.
1: The next recipient of Ati Vishisht Seva Medal and Rear Admiral Nirbhay Bapna, Vishisht Seva Medal.
2: अब बारी आ रही है नौसेना के अधिकारियों की. रियर एडमिरल निर्भय बापना विशिष्ट सेवा मेडल आज सम्मानित हो रहे हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति जी के हाथों से.
0: एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी.
1: Air Vice Marshal Kaushik Chatterjee, Medical, to receive the Ati Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायुसेना की चिकित्सा विंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य एयर वाइस मार्शल कौशिक चैटर्जी, राष्ट्रपति जी इन्हें प्रदान कर रही हैं अति विशिष्ट सेवा मेडल.
0: एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट.
1: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल इज एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ, वीएम फ्लाइंग पायलट.
2: आभारी भारतीय वायुसेना के इस पायलट की, एयर वाइस मार्शल संजीव वशिष्ठ, अति विशिष्ट सेवा मेडल आज गणतंत्र मंडप में उन्हें प्राप्त होता हुआ.

0: रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल राष्ट्रपति जी के कर कमलों से।
1: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
2: एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर, VSM एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटायर्ड, रिसीविंग अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: भारतीय वायुसेना के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विंग में रहे और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम संभालने वाले एयर वाइस मार्शल नंद कुमार नायर अब रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए
1: ब्रिगेडियर पवन धुल, विशिष्ट सेवा मेडल।
2: ब्रिगेडियर पवन धुल, VSM, द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स।
0: आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी ब्रिगेडियर पवन धुल विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत हो चुके हैं और आज बारी है अति विशिष्ट सेवा मेडल की, प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से। अब बारी सैल्यूट की।
1: सुबेदार एच होकाटो सेमा, 2024 पेरिस पैरालंपिक गेम्स शॉटपट कांस्य पदक विजेता, वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित।
2: सुबेदार एच होकाटो सेमा, 9 असम, रेसिपिएंट ऑफ अर्जुन अवार्ड्स।
0: सुबेदार होकाटो सेमा, कौन नहीं जानता इन्हें, भारतीय सेना के हैं लेकिन अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, शॉटपट के खिलाड़ी रहे हैं 9 असम के। राष्ट्रपति जी के सामने अपना पदक प्राप्त करते हुए अति विशिष्ट सेवा मेडल।
3: अब उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध, संघर्ष, युद्ध स्थिति के दौरान असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल।
0: हमारे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। आर्मर्ड कोर हेडक्वार्टर साउथ सदर्न कमांड का नेतृत्व करते हैं, उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति जी से।
2: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, PVSM AVSM, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
3: एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: और अब जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने एयर मार्शल मनीष खन्ना, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, फ्लाइंग पायलट है, आज प्राप्त करते हुए युद्ध के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने के लिए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल मनीष खन्ना, AVSM, VM फ्लाइंग, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तवा, AVSM, SM, द पैराशूट रेजिमेंट, टू रिसीव द उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट।
0: अगला युद्ध उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव को मिलता हुआ, अति विशिष्ट सेवा मेडल, पैराशूट रेजिमेंट हेडक्वार्टर के आप अधिकारी हैं।
3: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: गढ़वाल राइफल्स हेडक्वार्टर 9 कोर के अधिकारी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत।
2: लेफ्टिनेंट जनरल राजन शेरावत, AVSM, VSM, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत सुरेंद्र पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत एस पेंढारकर, AVSM, YSM, फ्रॉम द सम रेजिमेंट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
0: द सम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल इन्हें मिल चुका है और आज प्राप्त होता हुआ उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल।

0: Lieutenant General Gambhir Singh, earlier recipient of AVSM and YSM from Garhwal Rifles, receiving the Uttam Youth Seva Medal.
1: गढ़वाल राइफल्स के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं। उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सशस्त्र बलों के लिए विशिष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति जी के
2: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल प्रसन्न किशोर मिश्रा, earlier recipient of AVSM, Youth Seva Medal, Sena Medal, the Jammu and Kashmir Light Infantry receiving the Uttam Youth Seva Medal.
1: Jammu and Kashmir Light Infantry ka adhikari Lieutenant General प्रसन्न किशोर मिश्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द उत्तम युद्ध सेवा मेडल इज वाइस एडमिरल तरुण सोपती, एवीएसएम वीएसएम।
1: नौसैनिक अधिकारी वाइस एडमिरल तरुण सोपती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल अब मिलता हुआ उन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा, earlier recipient of अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
1: लड़ाकू विमान उड़ाते हैं आप, एयर मार्शल प्रवीण केशव वोहरा अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी, वायु मेडल, फ्लाइंग पायलट, receiving the Uttam Youth Seva Medal this evening.
1: और अब बारी है एयर कमोडोर अजय कुमार चौधरी की। आप फ्लाइंग पायलट हैं और युद्ध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्राप्त करते हुए उत्तम युद्ध सेवा मेडल।
2: एयर कमोडोर प्रभात मलिक, वायुसेना मेडल, उड़ान पायलट।
0: Air Commodore Prabhat Malik, Vayu Sena Medal, Flying Pilot, receiving the Uttam Youth Seva Medal.
1: Vayu Sena ke hi ek aur adhikari apni vishisht sevaon ke liye prapt karte hue Uttam Youth Seva Medal. Air Commodore Prabhat Malik.
2: Group Captain Kamran Nazir, Udan Pilot.
0: Group Captain Kamran Nazir, Flying Pilot, to receive the Uttam Youth Seva Medal.
1: और अब बारी वायु सेना के एक और अधिकारी की कि वे जाएं और राष्ट्रपति जी से उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करें। यह हैं ग्रुप कैप्टन कामरान नजीर।
3: परम विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सर्वप्रथम वाइस एडमिरल वर्तमान एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: वाइस एडमिरल नाउ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
1: और अब बारी परम विशिष्ट सेवा मेडल की। सबसे पहले एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं, एवीएसएम है, वीएसएम है, प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
3: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम फ्रॉम द इन्फेंट्री, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: परम विशिष्ट सेवा मेडलों की श्रृंखला में अब बारी है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की। अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, इन्फेंट्री के अधिकारी हैं।
3: वाइस एडमिरल संजय बात्सायन, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल।
0: द नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परम विशिष्ट सेवा मेडल

0: is Vice Admiral Sanjay Vatsayan, AVSM-NM.
1: भारतीय नौसेना के अधिकारी वाइस एडमिरल संजय वात्सायन अति विशिष्ट सेवा मेडल नेवी मेडल प्राप्त कर चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करके राष्ट्रपति जी को सैल्यूट करते हैं।
2: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल।
0: वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: और अब जा रहे हैं राष्ट्रपति जी के सामने अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
2: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: Air Marshal Ashutosh Dikshit, AVSM, VM, VSM Flying Pilot, is the next recipient of the Param Vishisht Seva Medal.
1: अब राष्ट्रपति जी से परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने जा रहे हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। अब भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
2: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल।
0: एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: परम विशिष्ट सेवा मेडल की श्रृंखला में अब माननीय राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह आप पायलट हैं, भारतीय वायुसेना के अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं।
2: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्लाइंग पायलट रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय वायुसेना के एक और अधिकारी एयर मार्शल सीतेपल्ली श्रीनिवास परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
2: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक उत्तम युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक उत्तम युद्ध सेवा मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल वीरेश प्रताप सिंह कौशिक प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: द कोर ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल माइकल एंथनी जूट फर्नांडिस अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए।
2: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नवनीत सिंह सरना अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल इसी श्रृंखला में आज जुड़ने जा रहा है परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली UYSM AVSM SM VSM फ्रॉम द इन्फेंट्री टू रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल
2: लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी उत्तम युद्ध सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी UYSM AVSM SM फ्रॉम द इन्फेंट्री रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
1: भारतीय सेना की इन्फेंट्री के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल मनीष मोहन एरी प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल।

0: Lieutenant General Harjeet Singh Sahi, Uttam Yuddha Seva Medal, Adivishesh Seva Medal, Yuddha Seva Medal, Sena Medal.
1: Lieutenant General Harjeet Singh Sahi, UYSM, AVSM, YSM, SM from the Infantry, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल हरजीत सिंह साही प्राप्त करते हुए अपना सम्मान परम विशिष्ट सेवा मेडल.
0: लेफ्टिनेंट जनरल धीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल.
1: The next recipient of the Padam Vishisht Seva Medal this evening is Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha, AVSM, SM from the Infantry.
2: Infantry ke ek aur adhikari Lieutenant General Dhirendra Singh Kushwaha Ati Vishisht Seva Medal prapt kar chuke hain, prapt karte huye Param Vishisht Seva Medal.
0: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal.
1: Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha, Sena Medal, from the Army Air Defence, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: Army Air Defence ke adhikari Lieutenant General Sumer Ivan Dikunha aprapt karte huye Param Vishisht Seva Medal.
0: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal.
1: Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal, to receive the Param Vishisht Seva Medal.
2: Armored Corps ke adhikari hain aap, Lieutenant General Preetpal Singh, Ati Vishisht Seva Medal prapt kar chuke hain aur aaj prapt kar rahe hain Param Vishisht Seva Medal Rashtrapati ji ke kar kamlon se.
0: Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
1: Surgeon Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: Abari Nari Shakti ki, Vice Admiral Aarti Sareen, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, prapt kar chuki hain aur aaj gaurav se prapt kar rahi hain Param Vishisht Seva Medal.
0: Vice Admiral Atul Anand, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal.
1: Vice Admiral Atul Anand, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, to receive the Param Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं वाइस एडमिरल अतुल आनंद, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और इस वक्त प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल.
0: एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त.
1: Air Marshal Vijay Kumar Garg, Ati Vishisht Seva Medal, Vishisht Seva Medal, Retired Aeronautical Engineering, receiving the Param Vishisht Seva Medal.
2: भारतीय वायु सेना से रिटायर हो चुके हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर रहे हैं मैकेनिकल विंग में. एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल.
0: एयर मार्शल सूरज सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, विशेष सेवा मेडल, उड़ान पायलट, सेवानिवृत्त.
1: The next recipient of Param Vishisht Seva Medal this evening is Air Marshal Surat Singh, AVSM, VM, VSM, retired.
2: भारतीय वायु सेना के पायलट रहे हैं एयर मार्शल सूरत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को.
3: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त.
1: लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, अति विशिष्ट सेवा मेडल, रिटायर्ड, रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल.
2: और अब पारी है परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने की लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया की. आप कोर ऑफ इंजीनियर्स में थे और रिटायर हो चुके हैं, प्राप्त करते हुए अपना पदक राष्ट्रपति जी के हाथों से.
3: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश

0: कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
1: लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल दिस इवनिंग।
2: आर्मर्ड कोर के अधिकारी रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर अति विशिष्ट सेवा मेडल, और विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के बाद, रिटायर होने के बाद आज प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल सेवानिवृत्त।
1: लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल फ्रॉम द इन्फेंट्री रिटायर्ड।
2: इन्फेंट्री के एक और अधिकारी, भारतीय सेना को आपने अपनी सेवाएं दी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी अति विशिष्ट सेवा मेडल और सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
1: लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स रिटायर्ड।
2: और अब बारी कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सेवाएं दे चुके लेफ्टिनेंट जनरल जगमोहन सिंह सिदाना की अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप रिटायर हो चुके हैं और प्राप्त कर रहे हैं परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त।
1: लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल रिटायर्ड विल रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: कोर ऑफ सिग्नल्स में आपने काम किया था, लेफ्टिनेंट जनरल के विनोद कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर चुके हैं और आज प्राप्त कर रहे हैं रिटायर होने के बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल।
0: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल वायुसेना मेडल सेवानिवृत्त।
1: एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेना मेडल एंड वायु मेडल रिटायर्ड रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: भारतीय वायुसेना में रहकर आपने बहुत उड़ाने भरी है, एयर मार्शल सुनील काशीनाथ विधाते अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करते हुए परम विशिष्ट सेवा मेडल। सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को।
0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट।
2: भारतीय सेना के अगले अधिकारी परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति जी के सामने मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
0: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल।
1: मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल सेना मेडल फ्रॉम द ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: अगला परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं मेजर जनरल पंकज मल्होत्रा अति विशिष्ट सेवा मेडल ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के आप अधिकारी रहे हैं।
0: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान अति विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान अर्लियर रेसिपिएंट ऑफ अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल इज नाउ रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: आर्मर्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल चरणजीत सिंह मान परम विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त कर रहे हैं राष्ट्रपति जी के कर कमलों से। मेडल प्राप्त करने के बाद उन्हें सैल्यूट करते हुए
0: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
1: मेजर जनरल रुपेश मेहता सेना मेडल एंड विशिष्ट सेना मेडल फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी रिसीविंग द परम विशिष्ट सेवा मेडल।
2: आर्टिलरी रेजिमेंट के अधिकारी मेजर जनरल रूपेश मेहता की बारी है अपना परम विशिष्ट सेवा मेडल ग्रहण करने की। आप विशिष्ट सेवा मेडल से पहले ही अलंकृत हो चुके हैं।
3: अब सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। युद्ध अथवा संघर्ष अथवा युद्ध स्थिति के दौरान अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा।

0: विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल.
1: The first recipient of Sarvottam Yodha Seva Medal, Lieutenant General Pratik Sharma, PVSM, AVSM, CM, from the Madras Regiment, Headquarters, Northern Command.
2: सात बहादुरों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. सबसे पहले बारी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की. परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, मद्रास रेजिमेंट के आप अधिकारी हैं. प्राप्त करते हुए युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के लिए सर्वोत्तम युद्ध सेवा
0: मेडल. एयर मार्शल नगेश कपूर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल.
1: Air Marshal Nagesh Kapoor, PVSM, AVSM, VM, Flying Pilot, receiving the Sarvottam Yodha Seva Medal.
2: सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने की बारी अब है भारतीय वायुसेना के अधिकारी एयर मार्शल नागेश कपूर की. परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, आप फ्लाइंग पायलट हैं भारतीय वायुसेना के.
0: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, बार टू सेना मेडल एंड बार.
1: Next recipient of Sarvottam Yodha Seva Medal is Lieutenant General Rajiv Ghai, UISM, Ati Vishesh Seva Medal, Seva Medal from the Kumaon Regiment, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, Army.
2: कुमाऊं रेजिमेंट के अधिकारी, विशिष्ट सेवाएं दी आपने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई. उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
0: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल.
1: एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेना मेडल, वायु सेना मेडल, फ्रॉम फ्लाइंग पायलट, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: भारतीय वायुसेना के एक और उत्कृष्ट अधिकारी पायलट एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को और अपने
0: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, सेवा निवृत्त.
1: नेक्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम रिटायर्ड.
2: वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह अब प्राप्त कर रहे हैं अपना सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल. आपने भारतीय नौसेना में युद्ध के दौरान
0: एयर मार्शल दी थी. नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, सेवानिवृत्त.
1: एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायु सेना मेडल, फ्लाइंग पायलट रिटायर्ड, रिसीविंग द सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
2: भारतीय वायुसेना के एक उत्कृष्ट अधिकारी और पायलट एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल.
0: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त.
1: The next recipient of Sarvottam Yodha Seva Medal is Air Marshal Jitendra Mishra, AVSM, VSM, Flying Pilot, Retired.
2: भारतीय वायुसेना के एक और पायलट रहे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी को. और इसी के साथ आज के जो रक्षा अलंकरण थे उनका समापन होता हुआ रक्षा सचिव राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए.
3: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए.
2: माननीय राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी.

0: रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा चरण ये था, जिसमें विशिष्ट सेवा पुरस्कार आज सशस्त्र सेनाओं के विशिष्ट अधिकारियों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति जी अब गणतंत्र मंडप से सबका अभिवादन करते हुए धीरे धीरे बाहर जाती हैं। उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और उनके ठीक पीछे अन्य अधिकारी। और ये बता दें कि आज 105 अधिकारियों को ये विशिष्ट अलंकरण यहाँ पर प्रदान किए गए, जिसका आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी के जरिए सुन रहे थे।
1: As this solemn ceremony draws to a close, let us offer our deepest respect to all the awardees and their families. May we always remember that the spirit of duty that drives our armed forces. I, Lipika Das, along with my co-commentator, Mahindra Singh Lales, OB in charge, Prabha Kumar, with our technical team, Ashok Kumar Mishra, Sumit Katiyar, Hemraj Meena, and producer, Pramod Kumar, take you back to the studios of Akashvani.